अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवाड़ चुपे चुप न हो गई जे लाए नहार दिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बना पूरिया पार सह स्यान पालक होए ता एक ना चले ना किव सच्याड़ा होइए किव दूरे टुटे पार हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया ना हुक्मी हो हुक्मी होवन आकार वंजीव हुक्म मिले वडियाए हुक्म मिले पाइए एक हुक्मी जगशीश एक हुक्मी सदा पवाइए हुक्मी अंदर सब को बार हुक्म ना कोय नानक हुक्मी जे बुझे ता हमें के ना कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वड्याया चार गावे को विद्या विखन विचार गावे को साच करे गंधखे

कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देव दया देव रन दे थक पाए, जुगा जुगा सर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे वे परवाहो, साचा साहेब साच नाय, पाख्या पाओ अपार, आखे मंगे देव दे, तात करे दातार, फिर के अगे रखिए, चेते से दरबार, मुँह के बोल न बोलिए, चित सुन तरे त्यार, अमृत वेला साचना, वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानक ए में जानिए, सब आपे सचियार, थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिनसे व्या तिन पाया मान, नानक गाविये गुनी निदान, गाविये सुनिए मन रखिए पाओ, तुख पर हर सुख कर ले जाए, गुरमुख नादन गुरमुख वेद, गुरमुख ले समाय, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माय, जेहो जाना आखा नाय, कह न कथ न जाए, गुरा एक

0: for speed.
1: सात संगत जी हिम्मत सिंह जी जे दस्तार से आ रहे ने उनके मामा जी मनिंदरपाल सिंह बेअंत सिंह जी दस्तार से आ रहे ने उनके मामा जी जसप्रीत सिंह ये साड़ी कल्चरल ट्रेडिशन है कि जड़ा मामा हुंदा अंकल हुंदा मटरनल अंकल वो दस्तार से आंदा

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया। तुद बिन सिद्धि किनै ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा।

मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हारु हारु हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन

शैल पत्थर मह जंतु उपाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। काहे मन भौ करिया, ऊडे ऊडावै सह कोसा। तिस पाछै बचरे छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै। मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान। ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल।

जिन हर निर्भउ ते आया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल।

तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ह बहुसिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन

अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझू करे हो रक्षा। राख लिहो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय।

काल पाए कर विश्वन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो, आद अंत्य कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को

चीटी ते कुंचरयस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं भूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु ताके ताप तनक मह हरिहु रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई दुष्ट छाह चव सकै न कोई।

ज्ञान पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री यशपान कृपा तुमरी कर।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

चार संगत जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आज बोधि पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याए फिर अंकित करते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई थे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कारण उन्हें आवाए सब साई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार का ध्यान करके हर सच बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां जपियां जिन्हें नाम जपया बन छकया देख चलाई ते वाहे देख डिड कीता तना प्यारियां ते त्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघा सिंघणियां धर्म हे सी दिते बांध बांध कटवाए कोपरियां लवाईयां चरकरियां ते चढ़े आर नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं आ रहा सी किसे देखे सत्संग निभाया ते नां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। पहना तख्तान गुरुद्वारे का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। नाम चिता है चित आवन का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तहन चरियात देख देख की फतेह ब्रज की पैज पंथ की जी श्री साहब जी साहेब खालसा जी के बुरबल ने बोलो जी वाहे गुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान शाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उचे मत बद के राखे आप वाहिगुरु। गुरु की बनवाए पंथ सदा शाही जो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुद्वारा हम जिन्हों को आप जी पंथ छोड़िया गया है उन्हें खुले दर्शन की रात सेवा संभाल सदा अपने खालसा जी को बख्शो ये नोटियां जी ओट गुरु न्यासरिया न्यासरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास एक महाराज आप जन करो अरदास मेरे आज बख्शो आप जन पित्र गुरबाणी सुखमणी साहब ने संबूर पाठ दिता है इस वे संध्या समा जान के सोधर रैल साहब पाठ की तेरी कृपा करो भूया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरदय पछाने की बाता करो जी अगो तो शो से पित्र बाणी चाल बल बुद्धि बख्शिश करो कि महाराज इस खुशी आप दिया बख्शिया दातों में पुत्र ग्राम छाने देगा तैयार करें हाथ दतार आप दी भोग लाओ शीर प्रसाद सार संगत की रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देह प्रदेह रखा बख्शिश करो जी कि महाराज आपके मक्खियां दातों के नगर तुर सवारियां प्रवान कर दी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलियां सिंह सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटीकर बख्शो अरे सदा ही सदर अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी पालता करो गरीब महाराज बख्शिश करो अमृत वेले तो लैके दाते आई हैं साफ संगतान यादी दर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगतान का दर तेर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु की बुराज कृपा करो दूर दराज कर बैठिया लाइव कृत्या की शरण कर रही सारी संगतान यादी प्रवान करो घड़िया लेके लाओ सतारा ने कृपा की संगतान तो बख्शे ने संगत आपके चरण धनबाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर में गुरु घर सेवा सिंगतार संगत माया भेटा कर चरना प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सबल करो घट वार सब संगत शुभकामना सबना पूरी करो जी तार मेहर करो मेहनत कर आओ सेवा प्रवान करो भुलत भाई बख्शो पवित्र हुक्म नवी बख्श करके बरा अज की छावा ने कीर्तन दरबार हमता वास आग्ञा बख्शो रेंदे कार सवार के चना तला जी बनाओ कई प्यारे मेरे जिन्हें मेरा आपका नाम चाहता है नानक नाम करती कला तेरे वाहेगुरु जी का खालसा।

गुरु प्यारी साध संग जी, आओ मन अपना गुरु चरणा विच जोड़िए। सतगुरां दी बख्शी फतेह बुलाओ, कोई भी रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ कुछ समय दे गुरु चरणा विच हाजरियां लवाइए जी।

कहना ही नहीं, महसूस करना। सतगुरु जी की शख्सियत नूं, उन्हां दी इमेज नूं सुरत विच लियाओ, प्यार नाल अंदरों आखो,

0: आओ जी
1: रल मिल बैठण दा सुभाग मिले है, मन जोड़ के सारे बैठिए, वड्डी गिणती विच सजे हो, बाकी संगतां आ भी रहियां हन, जिथे जगह मिले प्यार नाल सजदे जाइए ते नाल नाल गावीए सुनिए समझिए और अपनी जिंदगी विच लागू करन दी कोशिश करिए। संगना नहीं चाहिदा, जदों मौका बने नाल रल के गायन करीदा, गुरु जी के कीर्तनीए बनीदा, गुरबाणी के कीर्तनीए बनीदा। जदों सारे आपां कीर्तन करदे आ गाउंदे आ फिर सारे कीर्तनीए कीर्ति करिए। रागी राग गाउंदे हन पर वह कीर्तनी उदों बनदे ने जदों राग विच कीर्तन गाउंदे हन। कीर्ति करन वाले नूं कीर्तनीए।

0: नमः अष्टपदि सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ
1: कल क्लेश तन मह मिटावौ
0: सिमरौ जासु बिसंबर इकै
1: नाम जपत अगंत।

0: प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे,
1: प्रभु कै सिमरन आनंदिन जागे,
0: प्रभु कै सिमरन भौ न व्यापे,
1: प्रभु कै सिमरन दुख न संतापे,
0: प्रभु का सिमरन साध कै संग
1: सर्व निधान नानक हर रंग,
0: प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद,
1: प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध,
0: प्रभु कै सिमरन।

0: सिमरै जिने आप सिमराए,
1: नानक ता कैला गो पाए,
0: रब का सिमरन सब ते ऊचा,
1: रब के सिमरन उदरे मुचा,
0: रब के सिमरन तृष्णा बुझे,
1: रब के सिमरन

0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभु के सिमरन सहज समानी,
0: प्रभु के सिमरन नेह चलिया सुन,
1: प्रभु के सिमरन कमल वेगासन,
0: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार,
1: सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार।
0: सिमरह से जन जिनको प्रभु मया,
1: नानक तिन जन सरनी भया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग भेद उपाए,
0: हर सिमरन भये सिद्ध दति दाते,
1: हर सिमरन नीच चोह कुंट जाते,
0: हर सिमरन धारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन की सगल अकारा,
1: हर सिमरन मैं आप निरंकारा,
0: हर कृपा जिसे आ

0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया
1: सगल के आगमन मध्य फिरिया
0: अनेक प्रकार किए।

0: जिस जन को ब्रह्म दर्श बिहासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगले पुरख में पुरख प्रधान
1: साध संग जाका मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: तो गणिया सब ते ऊंचा
0: जाका मन होए सगल की रीना
1: हर हर नाम दिन कट कट चीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: एक है सगल श्रेष्ठ साजना
0: सुख दुख जन समृष्टिता
1: नानक पाप पुन नहीं लिपा।

0: हलुआ के गृह भीतर बसै
1: अंत खेल माया रंग रसै
0: दृढ़ कर मानै मने प्रतीत
1: काला होवे मुड़े चीत
0: पैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार मान लो
0: याहू जुगत बिहानी।

0: न हुए।
1: उसकी वस्त से आगे राखे
0: प्रभु की आज्ञा माने माथे
1: उसे जोगन करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दया
1: अंक पाद माया के हेत
0: सर पर भूवत जान अनेक
1: गिर की छाया से रंग लावे
0: वो बिन सह मन पछतावे
1: जो जिसे सो चलन हार
0: लपट रहे होते अंध।

0: शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अश्वरी
1: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
0: इस ठाकुर कौ रख मन माहे
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावह
0: इस कौ सिमरत परम गत पावह
1: जय प्रसाद वसे सुख मंदर
0: इस हेते आए सदा मने अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख वसना
0: आठ पहर सिमरहु तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याय त्यागन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हलावह
0: इस हेते आकतवर लुभावह
1: जय प्रसाद सुख सेज सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
1: जय प्रसाद सबको मन
0: मुख ताको जस रसन बखान।

0: देह प्रसाद तेरा ओला रहत,
1: मन सुख पावह हर हर जस कहत,
0: देह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके,
1: मन सरनी पार ठाकुर प्रभु ताके,
0: देह प्रसाद तुझको न पहुँचे,
1: मन साथ साथ सिमरहु प्रभु उच्चे,
0: देह प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
1: नानक ताकी भगत करे।

0: संग मिटे अभिमान
1: साध के
0: संग बुझे प्रभ नीरा
1: संग सोत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन पुरानी
1: नानक साध की शोभा प्रमाए समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर
0: साध के संग आवह बस पंचा
2: संग मृत रस।

ब्रह्मज्ञानी सदानर्दोक ब्रह्मज्ञानी के दृश्यमान ब्रह्मज्ञानी के तीर्येक ब्रह्मज्ञानी का युगनाओ ब्रह्मज्ञानी निर्मलते निर्मला ब्रह्मज्ञानी के मन है प्रगास ब्रह्मज्ञानी के मित्र सतर्श।

0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ पूरा न पया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदासी।
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता।
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान।
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप।
0: ब्रह्म ज्ञानी

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए।

0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कत्या न जाए दाखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुग जुग जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता।

0: निमक निमक ठाकुर नमस्कार है। नानक हुआ परसु सगल निस्तार है। अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना वर्ष
0: मन में प्रीत निरंजन दर्श
1: पार त्रय रूप न बेख्य नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: करन न सुने काहू की निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: गुर प्रसाद बिखिया पर हर
0: मन की वासना मन ते टरे
1: इंद्री जित पान।

0: सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम हुवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मंतन अर्पय विष्ण प्रीत
1: हर के चरण बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत।

0: आवै जन कोई
1: कर कृपा अंतर और तारे
0: बस प्रेत मुक्त पाथर को तारे
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत किते न पाई है धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नगरी आया
0: दास दसंतन पाई तिन पाई।

0: जीवन मुक्त सो कहावे,
1: तैसा हरख तैसा उस सोग,
0: सदा अनंत है नहीं वियोग,
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: तैसा अमृत तैसी बिख खाटी,
1: तैसा मान तैसा अवमान,
0: तैसा रंक तैसा राजान,
1: जो बताए साई जो
0: नानको पुरख कही है जीवन मुक्त,
1: आर ब्रह्म के लिठाओ,
0: जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ,
1: आपे करन करावन जोग,
0: प्रभा वैसोई फुन होग,
1: असरे आप हो अन सतरंग।

0: रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टसदी कई कोट हुए पुजारी
1: कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट भय तीर्थवासी।

0: त्रया प्रपूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट वो जोनी फिर
1: कई कोट वो कई कोट बैठत ही काहे
0: कई कोट काले सख पाहे
1: कई कोट किए तनवंत
0: कई कोट माया में चिंत
1: जह जह पाणा तह तह राखे
0: नानक सौ कुछ प्राप्त कह हाथे
1: कई कोट भय बैरागी
0: नाम नाम संकर्ण लागे
1: कई कोट प्रभ कौ खोजनते
0: आत्म में पार
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास
0: इनको मिलो प्रभु नाथ
1: कई कोट मांगे सत्संग
0: पार ब्रह्म तन लगा रंग
1: जिनको हुए आप सुप्रसन्न
0: नानक ते जन सदा धन्य।

0: जलतल महियल सोई अस्पली
1: करण करावण करने जोग
0: ज्योतिष पावै सोई हो
1: किन में था बुता पुनहारा
0: अंत नहीं किछ पा।

0: किरण समान कच संग न जावे।
1: बहु लश्कर मान को पर गरियास,
0: पल पीतर ताका हुए विनाश।
1: सब ते आप जन बलवंत,
0: किन में हुए जाए पसमंत।
1: इसे न भले आप अहंकारी,
0: धर्म राय किस करे खुआरी।
1: गुरु प्रसाद जाका मेरे अभिमान,
0: तो जन नानक दर गए परवान।
1: कोट कर्म करे हो तारे,
0: पावे सगले बिरतारे।
1: अनक तपस्या करे अहंकार,
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार।
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे,
0: हर दरगह को कैसे गवे।
1: आप उसको जो भला गवे,
0: इसे भलाई निकट न आवे।
1: सर्व की रेंजा का मन होए,
0: कहो नानकता की निर्मल सोए।
1: जब लग जाने मुझ दे गोए,
0: तब इसको सुख नाही कोए।
1: जब ही जाने मैं किस करता,
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता।

0: संत का निंदक हिन के कन्ना पाए,
1: संत का निंदक मा हथियारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राज ते हीन,
0: संत का निंदक दुखिया।

0: सार
1: मंथन मुख बोले और मुखी
0: सदा सदा जन होते सुखी
1: एको एक एक बचाने
0: सोची जाने
1: संग जिसका मन मान्या
0: नानक तिने निरंजन जानिया
1: प्रसाद अपना सूझे
0: इसकी जानू तृष्णा बुझे
1: साध संग हर हर जस कहत
0: सर्व रूप त्यो हर जन रहत
1: अंधन कीर्तन केवल वख्यान
0: कृष्ण मैं सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जन की आशा
0: इसकी कटिया जम की फासा
1: की जिस मन भूख
0: नानक सहन लागे दुख
1: मन चित आवे।

0: जाप,
1: अविनाशी प्रभ मन आपे आप,
0: आपन किया कछु न होए,
1: जिसो प्राणी लो चेक होए,
0: जिस बिन नाही तेरा किछ काम,
1: कत नानक जपे हर नाम।

0: सब की कला बिना कहता वह
1: जेको होए वह जाता रे।
0: किस देन हार जाने गावार
1: जिस गुर प्रसाद दूते हो रोग
0: नानक सूजन सदा अरोग
1: यो मंदिर को ता मैं थम्मन
0: क्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन
1: ज्यो पाखाण नाव चढ़ धरे
0: प्राणी गुर चरण लगत निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: गुर दर्शन देख मन हुए।

0: के कर्तव्य विरथे जात
1: मारे न रखे अवर न कोए
0: सर्व जी अंगा रखा सोए
1: काहे सोच करे रे प्राणी
0: जब नानक प्रबल विडाणी
1: मारम बार बार पर जपिए
0: ई अमृत अमर तंत्र पिए
1: नाम रतंजन गुरु गुपाया
0: किस अवर नहीं दृष्टाया
1: नाम धन नाम रूप रंग
0: नाम सुखर नाम

0: अनक उपावी रोग न जाए
1: रोग मिटे हर हरत लाए
0: सर्व निदान मैं हर नाम निदान
1: जप नानक दरगह परवान
0: मन प्रबोधो हर के नाए।

0: प्रभ की दृष्ट महासुख होए
1: अरद पावे बिरला कोए
0: जिन चाख्या से जन तृप्तान्ने
1: पूरन पुरख नहीं डोलाने
0: भर भरे प्रेम रस

0: मित्र बेक दर्श सुख होए,
1: मन बिरसा साध चरण धोए,
0: भक्त जना कै मन तन रंग,
1: बिरला कौ पावै संग,
0: एक वस्तु दीजै कर मया,
1: गुरु प्रसाद नाम जप लया,
0: ताकि उपमा कही न जाए,
1: नानक रहया सर्व समाए,
0: प्रभु बख्शंद दीन दयाल,
1: भक्त बछल सदा कृपाल,
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल,
1: सर्व कटा कर्त व्रत पाल,
0: आदि पुरख कारण करतार,
1: आदि जना के प्राण दार,
0: जो जो जपै सो होए पुनीत,
1: आदि पाए लाभ है मन हीत,
0: हम निर्गुण यार नीच अजान,
1: तुमरे शरण तुमरे नानक तुमरे शरण पुरख भगवान,
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
1: एक निमकार के गुण गाए,
0: अनिक राज भोग बढ़ियाई।

0: जब आकार एहो काच नंद रहटेता
1: बापुन तब कहती हुता
0: जब तारी आपन सुन समाध
1: रब बैर विरोध की संत मात
0: जब इसका वर्ण जहन न जापत
1: तब हरख सो कह किसे व्यापत
0: जब अपने आप पार ब्रह्म
1: तब मोह काह किस होवत पर
0: आपन खेल आप वर्तीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल धने
1: तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नर्क सुरक कहो कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए
1: तब शिव सकत कहो कित ठाए
0: जब आप है आप अपनी जोत तरा
1: तब कवन निडार कवन कत डरे
0: आपन जलत आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अपना शीशक अपन आसन
1: जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस हुए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ का
1: तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर गाधे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाते
0: अपने आप ही अचर जा
1: नानक अपन रूपा भी उपर जा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पात होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन कुमान कौन अभिमान
0: जय

0: पर ठाडा गुरु सूरा
1: नानक ताके कार्य पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
1: दर्शन बेगत उद्धत श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल वरदान सुंदर।

0: एक स्कट माही
1: अंतरंग नाना देशा है
0: नवनीत अमृत प्रभु का नाम
1: मैं
0: समाद अनहत तैना
1: जाएगा
0: देखा जिसे आप दिखाए
1: जन सोची पाए
0: तू अंतर सो बाहर अनंत
1: व्याप रहा भगवंत
0: धरण माही आकाश पयाल
1: सर्वलोक पूरन प्रतपाल
0: वन तीन पर्वत है।

0: मन मांगो।
1: आप छोड़ बेनती कर हार,
0: तुम अगन सागर तरहो,
1: हर धन के भर लेहो भंडार,
0: नानक गुरु पूरे नमस्कार,
1: खेम कुशल सहज।

0: मनसो संजमने मानेक बिसिख
1: वेद पुराण कतेव पुराण जमीन जमान समान के पिख
0: कौन आहार जति जतहार समय सब चार हजार के दिख
1: श्री भगवान भजे बन भूपत एक रती बन एक न लिखा
0: शुद्ध से पाह तुरंत दवा सुसाज सना

0: छोड़ दे मलंद मासन मातिक जान के मान मलैया
1: गाड़ी गड़न के तोड़ नहा सुबह तनी जग चाल भैया
0: साहेब श्री सब को सर नायक जाचकन एक सो एक दवैया
1: जानव देव बनिंदन साचर।

0: जानत
1: मोड़ का भेद न जानत
0: महादेव को कैत सदा सेव
1: निरंकार का जिन रहना
0: आप अपनी बुद्ध है जीती
1: बाढ़ न

0: रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया
0: रतन परिवार प्रिया शब्द गावन।

जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दा निग मान रही गुरु रूप साध संगत जीओ सनिमर फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का ही कीर्तन दरबार जो नवे साल दी आमद ते करवाया जा रहा है, इस विच रूहानियत दे सोमे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर दे हजूरी रागी जत्थे आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। आओ कीर्तन का आनंद।

0: कीर्तन करते हैं, एक नहीं अनेका बोला हूँ, सतगुरु जी बख्शनी उभान संगत बख्शी बख्श लेना। आओ साढ़े पंथे बहुत ही सत्कार योग संत बाबा रणजीत सिंह जी आ चुके हैं, आपा उन्हों को शब्द कीर्तन विचारा सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ऐसे ही भाई साहब जी का जत्था जिन्हां ने सानू लाहेवाणी का कीर्तन सरवण करवाया है, हुण भाई साहब रणजीत सिंह जी आप अपने कीर्तन जत्थे दे नाल आप जी नूं कीर्तन सरवण करवाएंगे। एक होर बेनती है कि एक भैन जी का फोन मत्था टेकदे हुए गवाच गया सीगा, वह मेरे को लेते हैं, वह मेरे को आके लै सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सारे बोलो तन तन सतगुर नानक दे,
1: सतगुर नानक दे।
0: महाराज नू महसूस करके बोलना, फील करके।

अगले वीकेंड दे 14-15-16 दे सैक्रामेंटो दशमेश दरबार गुरुद्वारा साहब विच दीवान हैं। 14-15-16 अगस्त दे इसे तरह 11-12 दे रीनो परसों दा ते अगले दिन दा दो दिन दे समागम ने। कैलिफोर्निया दा इन्ना ही प्रोग्राम सी, बिकर्सफील्ड विच, सैन होजे विच, सैक्रामेंटो विच ते रीनो विच, एले विच, बाकी अगे प्रोग्राम शिकागो विच, मलवाकी विच, इंडियन एपलस विच अगे होने ने। फिर फील्ड इत्थे नेड़े पैंदा, सच याद आ गया, फिर फील्ड अगले शनिवार दा दुपहर दा दवान है, रात दे दवान सैक्रामेंटो, शनिवार दिन दा दवान फिर फील्ड विच है, 11:15 to 2 PM तक फिर फील्ड नेड़े पै जांदा, उत्थे आप जी ने दर्शन देने हैं।